बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

एलिवेट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan, and you're listening to Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

इसलिए कि एक साथ हमने काम शुरू किया था, एक साथ ही हम इसमें पढ़े और इसमें ही फले फूले, इसी में नाम कमाया और साथ साथ बड़ा लंबा सफर तय किया अपने

Spanish.

Chakravarti Bhagwan Krishna ke saath saath.

पहचान रेडियो विस्वानी 1701 और समय हुआ ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोस में 13 मिनट हो गए हैं एक बजकर है शनिवार मस्ती म्यूजिक और इस मस्ती म्यूजिक पर आपके साथ है आज सू और चलते हैं भगवान कृष्ण के साथ साथ बहुत से लोग जो है इस सप्ताह उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है भगवान कृष्ण की ओर से चलते हैं आज खास करके हम बधाई दे रहे हैं मिसेस धनगौरी सोलंकी को जो इस सप्ताह अपनी 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया है भगवान कृष्ण के साथ साथ क्या बात है आंटी जी हैप्पी बर्थडे और मेनी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एंड हैप्पी माइलस्टोन चलते हैं आपके लिए एक प्यारा सा गीत

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन।
3: बहुत से यहाँ पर ब्रिस्बेन में नेपाली दोस्त भी है, उनको भी याद कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे करां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
0: अरे शनिवार मस्त म्यूजिक रेडियो विस्वानी आयम, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: और दोस्तों, अगर आपने हमारे कुछ थोड़ी मोड़ी अनाउंसिंग मिस कर दिए हैं तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन अब फिक्स हो गई है। गाना तो आपने सुना मजेदार, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची, इसके लिए हम आपसे माफी लेते हैं। चलते हैं अगला गीत पेश करते हैं। बहुत प्यारा सा गीत है, जिसे मैंने पहले कहा है कि जो हमारे नेपाल के लोग हैं बहुत दुखी है, उनको हम आज याद कर रहे हैं अगला गीत में। तो यही भगवान से विनती करते हैं कि उनके भी सहायता सभी ओर से भगवान कृष्णा दें।

बहुत प्यारा सा गीत फिल्म कल हो न हो पर्दे पर शाहरुख खान के लिए। इस गीत में आज हम अपने सभी नेपाली दोस्तों को आज याद किया जो आज बहुत दुखी है। साल में हम सभी उनको आज भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान कृष्णा भी उनको भी शक्ति दे, बहुत कुछ दे जिंदगी में, सब कुछ उनको जब पहले जैसा ही हो जाए। दोस्तों आप सुन रहे रेडियो विस्पानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रोड ब्रिस्बेन से। मुझे पता है बहुत से लोगों की कॉल्स हमारे पास है कि कुछ हमारी वॉइस उनके पास नहीं पहुंची, तो चलते हैं, आप तो एकदम परफेक्ट है। अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका, आप सुन रहे रेडियो विस्पानी, आपकी अपनी पहचानी शनिवार मस्ती म्यूजिक। आपको पता है कि मैंने एक 90th बर्थडे, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग हैं जो इस सप्ताह भगवान कृष्णा के साथ साथ उनकी भी जन्मदिन थी, और आप सभी को जन्मदिन पर बहुत सारे से बधाइयाँ। और उनमें से वन ऑफ एज जो 26 को अपनी 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया, बिलाइटेड हैप्पी 90th बिलाइटेड यानी कि माइलस्टोन, मिसेस धानगौरी सोलंकी फ्रॉम वेलबर्ट पार्क। और आज आपको हम याद करें, बहुत सारा सा प्यार आशीर्वाद भेज रहे रेडियो विस्वानी से। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, खुशी के आंसू छलकते रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको दिल देता है, यही दुआएं आपको बार बार। मिसेस धनगौरी सोलंकी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। चलते हैं आपके लिए एक और प्यारा सा गीत, जबकि आपने अपना जन्मदिन का पहला अनाउंसमेंट मिस आउट कर दिया, तो चलते हैं। सफलता आपको चुमे, खुशी आपको गले लगाए, अक्सर आपको ही चुने, प्रेम आपको गले लगाए, यही है जिंदगी। हैप्पी बर्थडे।

0: रोशन हो तुम।
1: जी हाँ मिसेस धानगर, इस तरह की हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि रोशन हो आपका सारा ये जहाँ। जन्मदिन आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 2:15 बज चुके हैं। आपके साथ है सू अभी से लेकर 3 बजे तक। यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने कल ब्रिस्बेन में बहुत धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, और आज वहाँ सैक्रामेंटो USA में बड़ी धूमधाम वहाँ चल रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्म वहाँ मनाई जा रही है। और हमारे पास कॉल है सैक्रामेंटो USA से। वहाँ विजयन जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, विजयन और कामनी, और फीडबैक है हमारे पास कि जस्ट लाइक द लिसनिंग सैक्रामेंटो रेडियो। बस यही सोचिए कि आप सैक्रामेंटो रेडियो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और विजयन जी आपके लिए अगला गीत, जबकि आप कृष्ण की आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा गीत। Join me every Saturdays from 1 p.m. on Shariwar Masti Music.

0: प्यारा सा कृष्णा भजन गीत आपने सुना और जिसे फरमाइश करने वाले थे विजय नाग कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजपानी।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और इस वक्त ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट रह गए हैं 2:00 में. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी. और दोस्तों, हाँ, आपको पता है कल क्या है? सभी को पता है कल यानी कि टुमारो इज संडे. और संडे को क्या है सभी को पता है ना? फादर्स डे है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फादर्स डे है. यूएसए, डोंट गेट कन्फ्यूज. मुझे पता है कि आपका फादर्स डे जून जुलाई में होती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग फादर्स डे टुमारो संडे. और एक बात और है दोस्तों, फादर्स डे का जो प्रोग्राम है, संडे प्रोग्राम 12:30 से आपके साथ हो जाते हैं हमेशा रोहित सिंह. लेकिन इस सप्ताह यानी कि टुमारो संडे रोहित सिंह आपके साथ नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ 2:30 आपका हमारा साथ है 12:30 से पूरे 5 o'clock तक. और हाँ, अपने फादर्स डे के लिए प्यारे प्यारे पापा के लिए प्यारे प्यारे गीत आप जरूर चूज करके हमें बताइएगा. हाँ, तो चलते हैं, देखें कि जीवन में हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितने ही बिजी क्यों ना हो, हर सुबह अपनों की याद जरूर आ जाती है. और हमारे साथ शामिल हो गई आज पहली बार शोभना नारायण फ्रॉम चेनला. शोभना, चलते हैं आपके लिए अगला गीत सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना हिमेश रेशमिया सोनू निगम की आवाज़ में, और आज पहली बार हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी कि पहली बार हमारे साथ जुड़ी हमारा प्रोग्राम पर वहाँ पर शोभना नारायण फ्रॉम चेनला। शोभना, वेलकम टू रेडियो विस्वानी। रेडियो विस्वानी आप 24/7 सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से है। शाम शनिवार मस्ती म्यूजिक, अभी मस्ती ही बाकी है दोस्तों। पहले आधे घंटे यानी कि लास्ट हाफ आवर या व्हाटएवर जो हमारे पास बचेगा, बिल्कुल ही आपको बीच पर ले चलेंगे हमेशा की तरह। शायद लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक पार्टी टाइम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होगा, ज़रूर होगा। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, हम बढ़ते हैं और हम चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी की ओर। सिडनी से फरमाइश है हमारे पास रजिन और मालती प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: और महेंद्र कपूर के वस का गीत को किसने फरमाइश किया? जी हाँ, ग्रीन एकर सिडनी में हमें सुन रहे हैं रजेन और मालती प्रसाद।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: और हम दोस्तों बढ़ते हैं कैलिफोर्निया USA की ओर। फरमाइश है हमारे पास कैलिफोर्निया से मैक्स प्रसाद की ओर से। मैक्स, आपके लिए अगला गीत। जी हाँ, सभी ने पता लगा लिया होगा अभिजीत की आवाज का।
12: कि किसी भी कोने में रहा,
0: वही ब्यूटीफुल सुना, कभी यादों में आऊं तो कभी ख्वाबों में आऊं।
12: बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: के बचिए।
1: बात तरह से गीत दोस्तों, इस गीत के लिए हमेशा हमारे पास फरमाइश आती रहती है, लेकिन आज हमारे साथ शामिल हो गए थे, हमारा प्रोग्राम सुन रहे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया USA। हम चलते हैं यहाँ पर के ड्रोन पार्क की ओर। जोनी और सविता हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप दोनों के लिए

तो हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में जॉनी और सविता फ्रॉम केड्रोन पार्क परमाटा सिडनी की ओर बढ़ते हैं। फरमाइश है हमारे पास परमाटा सिडनी से उषा और रॉबिन की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत।

पर ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश करने वाले थे रॉबिन और उषा जो हमें सुन रहे हैं वहां पर परमाटा सिडनी में। एक बार फिर हम चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए, विजयन वहां पर हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं आपके लिए अगला गीत आपकी फरमाइश पर। आप सुन रहे हैं आपके अपने पहचान रेडियो विस्पानी 1701। समय हुआ दोस्तों 25 मिनट हो गए हैं 2:00 हमारे स्टूडियोज में।

बोलो सोना, कल तक बहुत हीरो बनत रहा ना, अब का हुआ? एक नजरिया में चुप समझदार किड।

सदस्य हमारे साथ शामिल हो गए थे। हमारा प्रोग्राम सुने सैक्रामेंटो यूएसए में विजय और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 2:30 ही बजने वाले साथ हमारा आप करेगा ठीक 3 बजे तक आपके साथ है सु। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। हम चलते हैं दोस्तों वेलवेट पार्क की ओर और वेलवेट पार्क में वहां में सुने रमेश परमार, गीता परमार, साथ में है मिसेस धनगौरी सोलंकी। आप सभी के लिए बहुत प्यारा सा दही हांडी सॉन्ग।

0: और हमारे साथ शामिल हो गए थे दोस्तों बेलबर्ट पार्क से रमेश गीता परमार, साथ साथ में मिसेस धानगौरी सोलंकी।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: तो दोस्तों याद रहे हमारा आपका साथ है ठीक 3 बजे तक, है रेडियो विस्वानी अयाम, और ये है शनिवार मस्ती म्यूजिक। और मस्ती म्यूजिक पर आज थोड़ा सा अलग हमारे पास सॉन्ग्स है, जैसे आपको पता है कि त्योहार का भी समय है, बहुत से लोग अभी मस्त मगन में भगवान कृष्ण के आनंद में घूम रहे हैं, यानी कि झूला झूला रहे हैं और अभी भी खुशहाली मना रहे हैं, भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करें और होना भी चाहिए। चलते हैं हमारे पास ऑकलैंड न्यूजीलैंड से प्रवीणा की फरमाइश है और प्रवीणा की चॉइस पर एक गीत है, साथ साथ में उनकी बहन हमें सुन रही है सिडनी में आशा, और उनके एक और बहन है सूजी। जी हाँ, आशा एंड सूजी लिसनिंग इन सिडनी, प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड एंड कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो USA। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

और दोस्तों हमारे हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में बस 5-6 मिनट ही रह गए हैं 3 बजने में। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान। देखिए हमारे साथ कौन सफर पर है। जी हाँ, राज और रोशनी फ्रॉम स्ट्रेटन इस वक्त हमारे साथ सफर पर है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटिफुल फीडबैक आउट दिया। चलते हैं आप दोनों के लिए एक बहुत प्यारा सा कृष्णा सॉन्ग, कृष्णा भजन पेश करते हैं। एंड एंजॉय योर ड्राइव। थैंक्स वंस अगेन फॉर योर ब्यूटिफुल फीडबैक।

भाई प्यारे से कृष्णा भजन दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर आपने सुना जिसे फरमाइश करने वाले थे राज और रोशनी फ्रॉम स्ट्रैटन, इस वक्त हमारे साथ सफर पर है। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। क्या बात है, आते देरी ने कृष्णा है सभी कुछ चोरी करना सीख लिया। चोरी करके लड्डू खा रहा है, चोरी करके माखन खा रहे, अपने सभी दोस्तों को भी खिला रहे और ऊपर से कहते हैं कि मैंने नहीं खाए।

के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में तीन ही बज चुके हैं। हमारा आपके साथ यहीं तक था और याद रखिएगा कि टुमारो इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर एवरीवन क्योंकि टुमारो इज फादर्स डे। जस्ट रिमाइंडिंग यू, और फादर्स डे पर याद रहे रोहित सिंह कल आने वाले नहीं है, हमारा आपका साथ होगा 12:30 से। याद रखिएगा दोस्तों अपने फादर्स को डेडिकेट करने के लिए अपने प्यारे प्यारे संदेश हमारे साथ पहुंचा सकते हैं, प्यारे प्यारे गीत आप डेडिकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग भी इस सप्ताह कृष्णा जी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको बहुत सारे से बधाइयां, ब्लेसिंग्स।

और हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ। हमारी कल मुलाकात होगी टुमारो संडे को 12:30 से। आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय योर वीकेंड, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय। एंड जी हाँ, चलते चलते हम यही कहना चाहते हैं, सैक्रामेंटो से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि उनका झूला मुझे पता नहीं है, अभी तक उसने झूला लिया है नहीं, लेकिन एंजॉय, हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी टू यू ऑल।

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

इश्क के, मोहब्बत के। जी हाँ, ये जज्बात हैं वो जिनको सोच कर उतर जाती है आपकी पूरी थकान, और वो गाने जो आपके दिल में कर जाते हैं घर। आज फिर से कुछ ऐसे ही गानों, कुछ ऐसे ही जज्बातों के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों, लेकर आपका वीकेंड वाला शो सैटरडे डिलाइट। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। आज फिर से सताक्षी आपके वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए, खास बनाने के लिए आपके लिए लेकर आई है आपके इस वीकेंड के शो को। और जी हाँ, कुछ खास बातें, जज्बात, जिनके साथ साथ बॉलीवुड के कुछ गाने आज के प्रोग्राम में भर देंगे ढेरों रंग। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ आज का ये पूरा शो, और अपने साथ साथ अपनों के वीकेंड्स को भी खास करिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्तानी सुनते रहिए सताक्षी के साथ।

यूं तो वीकेंड जब आपकी जिंदगी में आते हैं तो खुशियाँ साथ लाते हैं, आपका सुकून साथ लाते हैं, लेकिन सही मायनों में जो किसी के इश्क में गिरफ्त है, जिनको किसी से मोहब्बत है, या रोज सुबह जाते समय जिनको कोई गुड बाय बोलता है और शाम को आते समय मुस्कुरा के दरवाजा खोलता है, ऐसे खुश नसीब जो लोग हैं, उनके वीकेंड्स खास तब होते हैं जब वो उनका हमसफर हमदम उनके साथ होता है। उनकी जिंदगी में सुकून का दूसरा नाम ही उनके समवन स्पेशल का, उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का उनके साथ होना है। तो अगर आप भी उन खास चंद लोगों में से हैं जिन्हें कोई प्यार से जाते हुए भी विश करता है और आते हुए भी उनके लिए बेचैन रहता है और मुस्कुरा कर उनकी सारी थकान को गायब कर देता है, तो जी हाँ, ये वीकेंड्स उसके साथ जरूर सेलिब्रेट कीजिए। उसे जरूर बताइए कि आप बेशक उसे हफ्ते भर वक्त ना दे पाते हो, लेकिन वीकेंड सिर्फ और सिर्फ उसके हैं आपके लिए और आप उन्हें खास बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही खास लोगों के नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, इसे भी सुनिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सताक्षी के

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग, स्पेल OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: सैटरडे की खूबसूरत खास बातों का साथ और सफर, आपके वीकेंड वाला सफर आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो 1701 एम पर। जी हाँ, आप वीकेंड को और भी खास और स्पेशल आपके लिए बना रहे हैं चंद बेहतरीन बातों और खास अंदाज के साथ। कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ मुस्कुराहट हो चेहरे पे, कुछ सुकून हो दिल में, और ये लम्हे बहुत ही खास हो, खासकर वो लम्हे जो रेडियो प्रस्थानी पर आप हमारे साथ बिता रहे हैं। तो इस खास लम्हे को, आपके इस खास वक्त को, आपके खास वीकेंड को आपके लिए और भी खास बनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी।

रमेश भैया ने अपनी वाइफ के नाम पे रिपोर्ट कर दी है, यहाँ पुलिस केस हो गया है, उन्होंने सख्त रिपोर्ट की है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं रमेश भैया के साइड चली जाऊँ, मतलब लड़की हूँ लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि भाभी को छोड़ के भैया की साइड ही आ जाऊँ। क्या कहा, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं सच में कह रही हूँ, मुझे भाभी की साइड होना चाहिए। चलिए सुन लीजिए भाई कि ये हुआ क्यों। एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन भाभी ने भैया से कहा कि सुनो मैं थोड़ा फोन चेक कर सकती हूँ, भैया ने कहा। भाभी ने कहा कि चैट्स, कहाँ व्हाट्सएप, कहाँ गूगल पे, कहाँ और इंस्टाग्राम, कहाँ फेसबुक, हाँ फ़ोन पे, कहाँ हाँ, मतलब सारी चीज़ें भैया ओके करते गए। और भाभी बड़ी खुश हुई, भाभी ने कहा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने लॉयल हो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने लॉयल होते हैं, और तुम सच में मेरे सबसे अच्छे हस्बैंड हो। तो फिर भैया ने कहा कि हूँ ना मैं सबसे अच्छा हस्बैंड, अब जाओ तुम अपना फ़ोन चेक कराओ। ये सुनना था कि भाभी ने पता क्या कहा, तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो मेरे साथ रह क्यों रहे, तलाक क्यों नहीं दे देते, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। इसलिए भैया ने भाभी पे केस किया कि भाई ये क्या है, लड़के कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है कि मुझे लड़कों के साथ ही खड़े होना है, आप देख लीजिए कि आपको किधर जाना है। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी से, ताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ।

0: जी, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOC, caring with dignity।
2: सैटरडे की खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें, खूबसूरत किस्से आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट में। सताक्षी आपके साथ है। जी हाँ, आपके वीकेंड को आपके लिए खास बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त गाने जो हैं वो इस सफर में मेरा आपका साथ भी निभा रहे हैं। तो ये जबरदस्त गानों वाला जो हमारा आपका साथ है ये आगे भी जारी रहेगा। हम और आप साथ साथ चलते रहेंगे अपने सुकून को ढूंढने के लिए, अपने मुस्कुराहट को ढूंढने के लिए और इस वक्त को खास बनाने के लिए साथ रहेंगे। फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसे भी एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए। भाई बातों में क्लियरिटी नहीं होती है तो सामने वाले को कभी कभी हार्ट अटैक पड़ सकता है। यही हुआ हमारे पड़ोस के पप्पू भैया के साथ। अब पप्पू भैया की वाइफ 10 दिन के लिए मायके जा रही थी, तो पप्पू भैया को अच्छा नहीं लगा ना, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारे हाथों में जादू है, अब तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा, मैं कैसे रुक पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा तुम्हारे बिना। अभी किचन का काम कर रही थी और काम करते करते बोली, तो कोई बात नहीं, आप पड़ोसन को बुला लीजिएगा। तो भैया बोलते हैं कि पड़ोसन को तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? भाभी ने कहा इसमें बुरा लगने की क्या बात है, भाई पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। तो भैया ने बोला, पप्पू भैया ने बोला कि पड़ोसन को बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा पड़ोसन को क्यों बुरा लगेगा, मैं काम करती हूँ, मैं खुद पड़ोसन को फोन करके बोल देती हूँ कि वो आपके पास आके रात में रुक जाए। सुनना था कि भैया के मन में पहले तो पहला लड्डू फूटा था और फिर दूसरा भी फूट गया। इस तरह की बीवी बता कौन नहीं चाहता, भैया तो चाहते थे कि वो लंबी जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम कुछ और दिनों के लिए चली जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। उसके बाद भाभी भैया की ओर घूमी और अपना ईयरफोन निकाला, ये कहते हुए कि ठीक है मम्मी, मैं इस बार 10 दिनों के लिए आऊंगी कुछ दिनों के बाद, और मैं आपके पड़ोसन से बात करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और इन्हें साथ में लेकर आऊं। फिर सुनना था कि भैया का चेहरा सच में देखने वाला था, उनके जितने अरमान थे ना वो कुछ वैसे ही थे, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। भैया ने भाभी से सवाल किया, तुम मम्मी से बात करेंगी? बोली हाँ, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी तो आप कैसे रहेंगे? तो मैंने मम्मी की पड़ोसन से बात कर ली, वो उनके पास मिल जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, मम्मी अब अकेली रहेंगी। तो इसलिए समझे आप, मैं कह रही थी कि क्लियरिटी चाहिए। भाई देखिए, अब किसी को हार्ट अटैक पड़ सकता है ना, कि उसके हाथ में लड्डू देके आपने छीन लिया, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, इस पर तो केस चलना चाहिए। चलिए फिलहाल हम केस में चलाते हैं, एक अच्छा सा गाना प्ले करते हैं आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसारणी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: लाइट अप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपकी सताक्षी आपके साथ है। जी हाँ, वीकेंड पर ढेर सारी बातों के साथ आई नो आपको बहुत मजा आ रहा है बातों में आज। और मगर ये मत कहिएगा कि सताक्षी भाई बातें ही करती रहो, गाने मत प्ले करो, फिर प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा। इसलिए

ये बातें हैं हमारी और आपकी, ये बातें खास हैं, ये बातें स्पेशल हैं, क्योंकि इन बातों में छुपा है जिंदगी जीने का फलसफा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी से जो लम्हे मिले उनको चुरा लीजिए, क्योंकि ये लम्हे अब जिंदगी में दोबारा तो आएंगे नहीं, ये पल जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इन पलों की सिर्फ और सिर्फ यादें रहने वाली हैं। आप अपनी जिंदगी का कोई भी फेज उठा के देख लीजिए, क्या आप उस फेज को कभी भी दोबारा जी पाए हैं आज तक? नहीं। वो लोग, वो यादें, वो बातें सिर्फ रह जाती हैं, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं आपकी जिंदगी के हर एक लम्हे को, खासकर आपके वीकेंड के हर एक लम्हे को और भी खास बना देने की। अब सोचिए ना, आप फाइल्स के बीच में उलझे हो, कंप्यूटर्स पे उलझे हो, आप क्लाइंट्स के साथ उलझे हो, बहुत हेडक हो, बहुत स्ट्रेस हो, और कोई बढ़िया सी बात, वीकेंड की याद आ जाए और आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। होती है ना ये खूबसूरत बात, प्यार भरी बात, और सारे स्ट्रेस को आप रिलीज कर देते हैं उसी मुस्कुराहट के साथ। तो इसीलिए मैं कहती हूं ना कि हर एक पल को जिंदगी के खास, खूबसूरत और बेहतरीन बनाते रहिए, ताकि आपकी जिंदगी खास, खूबसूरत और बेहतरीन बन सके। ठीक है जी, तो चलिए, फिलहाल बातें बहुत सारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी, हम आगे बढ़े गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्पानी, सताक्षी है आपके साथ और आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: इस खूबसूरत वक्त को आपके लिए खास बना रहे हैं हम। जानते हैं कि आपके वीकेंड्स आपके लिए बहुत ही खास हैं। पूरा हफ्ता सिर्फ भाग दौड़ में बीतता है। एक वीकेंड्स है जब हम चाहते हैं कि यार शांति रहे जिंदगी में, कोई हो जो हमसे किचकिच ना करे, कोई हो जो हमें हमारे काम ना गिनाए, सिर्फ हमारा ख्याल करे और हमारे वीकेंड्स को हमारे लिए खास बना दे। तो बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी कंप्लेन के आपसे आपके वीकेंड्स को आपके लिए खास बना दिया जाए। अभी एक और ट्रैक को सुनिए, उसके बाद ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बहुत ढेर सारी बातें हैं जो सताक्षी आपसे करती रहेगी। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन एंजॉय कर रहे हैं आप सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ।

अच्छा, देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, एक तो बीवी और दूसरी गवर्नमेंट, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट अगर पसंद ना आए तो आपकी देश की जो भी पॉलिसी है, जितने भी साल के लिए गवर्नमेंट स्टे करती है, आप उतने साल बाद उसे चेंज कर सकते हैं, आप अपना वोट बदल सकते हैं। बट बीवी अगर पसंद ना आए तो बस कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो काटना ही काटना है ना। वैसे आजकल लोगों ने ऑप्शन ढूंढ लिए हैं, लेकिन जो शादी निभाना जानते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, बीवी गले की ऐसी घंटी है जो आपको छोड़ के जाने भी नहीं वाली है, क्योंकि भैया वो तो आपको 7 जन्मों के लिए मांग चुकी है। तो अब इस जन्म में देख लीजिए कैसे छुटकारा पाना है, अगले जन्मों की तो खैर बात ही अलग है। और क्या पता अच्छी बात आपके साथ ये निकले कि ये आखिरी जन्म हो, 7वां जन्म हो। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रैक को एंजॉय करते हैं अभी, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.0 माने। अब आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: सुकून का सफर, वीकेंड्स वाला सफर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड्स बहुत स्पेशल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी अलग अलग प्लानिंग होती है, सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है। भला कोई एक ऐसा है जिसकी वीकेंड को लेकर सेम प्लानिंग हो? नहीं, दोस्तों के साथ अगर प्लान बन गया तो भाई सेम होगी, आज हमें मिलना है वाली प्लानिंग। लेकिन बेसिकली हम सब, इनफैक्ट एक ही फैमिली के मेंबर्स भी अलग अलग वीकेंड की प्लानिंग करते हैं। कोई मूवी देखने चला जाता है तो कोई गेट टुगेदर में चला जाता है या गेट टुगेदर अपने घर पे रख लेता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है। मैं ये पूछ रही थी कि आपकी क्या प्लानिंग है इस वीकेंड, आप क्या खास कर रहे हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ फटाफट। हम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक आपके लिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी, मैंने बात की थी कि इस वीकेंड आप क्या खास कर रहे हैं, इस वीकेंड क्या जिंदगी में खास होने वाला है, बताइए मुझे। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स आपने की होंगी, मे बी कोई मसाज पार्लर जा रहा हो, कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा हो, कोई डेंट पेंट होने की सोच रहा हो, मतलब जरूरी है ना यार, चेहरे का ग्लो बने रहना चाहिए। कोई हो सकता है कि वीकेंड पे अपना बैग उठाया और निकल पड़े पास की वादियों में घूमने के लिए, वैसे ये ऑप्शन अच्छा भी होता है। नहीं तो मैं ये कह रही थी कि बाकी सारे ऑप्शंस तो एक तरफ हैं ही, लेकिन वो लोग जिन्होंने पूरे हफ्ते आपका इंतजार किया है, आपसे मिलना चाहा है, आपसे चंद बातें करनी चाहिए हैं, जो आपकी फैमिली के मेंबर्स, उनका साथ जरूर देना है इस वीकेंड। ये याद रखिए, भले थोड़ी देर के लिए आप उनसे मिलें, बात करें, बट अपना वक्त आप उन्हें जरूर दें, बिकॉज वो भी पूरे हफ्ते आपसे बात करने के लिए बेकरार रहते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा वक्त जरूर निकालिए, बाकी आपकी प्लानिंग्स फुल ऑन रहने दीजिए, क्योंकि आपको खुद का वक्त भी बहुत जरूरी है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: अपने सैटरडे को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. हम खोज कर लाए हैं आपके लिए आज बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने जो इन पलों को आज सैटरडे डिलाइट को और भी खास बना रहे होंगे. तो अपने इस वक्त को और भी खास बनाते रहिए, हमें सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए. अगला ट्रैक हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी.

सैटरडे या वीकेंड, सैटरडे संडे की बात करूं, थोड़ी देर पहले हमने कहा भी था कि कुछ लोग बैग उठाया और वादियों में निकल पड़े उसका मजा लेने के लिए, तो मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूं कि बॉस हर चीज को वक्त देते हैं, लेकिन उस बंदे को भी वक्त जरूर दीजिए जो आपकी जिंदगी में बहुत ही खास है। एक रोमांटिक डेट तो बनती है ना, भले ही गर्लफ्रेंड हो या आपकी शादी हो गई हो, बट एक रोमांटिक डेट तो बनती है। और मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना यार बीवी है अब रोमांस कहाँ बचा, खासकर बीवियों की आदत होती है कि वो कहती है कि यार अब कहाँ रोमांस बचा जिंदगी में और कहाँ जाएंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपकी लाइफ को ऑल कलरफुल करती हैं, आपको रिफ्रेश करती हैं। तो ये मत सोचिए कि अब हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी एज नहीं रही, आप शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, ये सारी चीजें यार सही नहीं है। जब मौका मिले रोमांटिक हो जाइए, बिकॉज यही रोमांस जो है ये जिंदगी के जो टफ मोमेंट्स है ना उनको बढ़िया बना देता है, एकदम आपको बताता है इस एज में और इस उम्र में इस पड़ाव पे जिंदगी के भी कि यार कोई है जो आपका ख्याल रखने के लिए, कोई है जो आज भी आपसे मोहब्बत करता है। और आप आज भी भले ही किस एज में भी हो आप कितने खूबसूरत दिखते हैं, यह एहसास अगर चाहिए तो रोमांस तो बनता है। और वीकेंड वाले रोमांस की तो बात ही निराली है, उसी रोमांस के नाम ये अगला ट्रैक भी है। इसे एंजॉय कीजिए एंड सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: दोस्तों देखिए, जिंदगी जो है वो हर पल, हर घड़ी, हर फेज में आगे चल रही है और हर एक पल हमारी जिंदगी का कमतर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इस बढ़ती जिंदगी, बढ़ती उम्र के साथ ना तो आप अपने काम पर आके फोकस कर पाएंगे उतनी अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह आज आप कर रहे हैं, अपने सपनों के पीछे आप नहीं भाग पाएंगे। सेम एज आप जो दुनिया घूमना चाहते हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और फिर आपको लगता है कि सुख सुविधाएं जो आपकी हैं वो आपको मिलेंगी, आप उनको एंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब उम्र नहीं रहेगी तो आप घूमने भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई घुटनों में दर्द, चलने में प्रॉब्लम है ना, और कहीं मौसम सूट कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, बहुत सारी एज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप नहीं जा पाएंगे घूमने के लिए। और आज आपको लगता है कि यार क्या बिगड़ रहा है, घर में रहते हैं, अभी तो आराम करते हैं, चले जाएंगे जब फ्री होंगे, जब रिटायरमेंट आएगा या फिर जब एक एज हो जाएगी तब घूमेंगे। यकीन मानिए, तब कोई इतना एक्टिव नहीं रहता और कोई नहीं घूम पाता है। इसलिए आपके हाथ में आपका ये आज है, इसे जीते रहिए, इंजॉय करते रहिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए। ठीक है जी, तो चलिए इसी बात पर आगे चलते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

ये आपके वीकेंड्स थे जिनमें सताक्षी थी आपके साथ। आपके वीकेंड्स को मैंने कुछ खास बनाने की, मुकम्मल बनाने की, बेहतरीन बनाने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि आने वाले वीक के लिए आपको रिफ्रेश कर सकूं और आज आप सारी टेंशन, सारी थकान भूल के सिर्फ इस प्रोग्राम पर फोकस कर पाएं, इसे इंजॉय कर पाएं। आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो अगले वीकेंड आपको साथ निभाने के लिए इसी सफर सैटरडे डिलाइट में आपकी सताक्षी फिर से हो जाएगी हाजिर। नमस्कार।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है

0: ईयर से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सरगम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

एलिवेट चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो उमसॉक से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी
3: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद कॉल नाउ ऑन 04111270035 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपरवर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 ईयर से छोटे बच्चों के लिए

0: एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बेरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mohammed Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235. Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: टूट जाने के लिए। भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: बाकी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सत्य को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

सामने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

कैथोलिक चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

ना बदला मैं, ना बदला।

लाइफ चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413 701651.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258।

डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और गीता ने कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। राधे राधे श्रोताओं, रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर मैं हूँ सताक्षी, आज एक बार फिर से आपके साथ, और मेरे साथ हैं भक्ति रस में डूबे कुछ बड़े ही अनमोल गाने। ये है भक्ति सागर का सफर। और भगवान श्री कृष्ण ने कितनी खूबसूरत बात कह दी ना श्रीमद् भगवद गीता में कि पहली लड़ाई हम सबको अपने आप पर जीतनी है। अगर हमारा मन ही गलत रास्तों की ओर भागता रहेगा तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि ईश्वर हमें सद्मार्ग पे चलाएंगे। आइए आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलाएं, हमारे ज्ञान चक्षु खोलें और हमें हमेशा पाप से बचाएं। शुरुआत करते हैं आराधना की इस गीत से, सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी और बने रहिए सताक्षी के साथ।

अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है भक्तजनों कि हम सुबह पूजा में दिया क्यों जलाते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है। दिए की लौ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, जो ये सिखाती है कि चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, हमारा दृष्टिकोण हमेशा उन्नति और प्रकाश की तरफ ही होना चाहिए। आज जब आप अपने घर की पूजा में दिया जलाएं, तो ये संकल्प भी लें कि आप किसी के दुख को अपने मीठे बोल से कम करेंगे। आइए सुनते हैं आगे बढ़ते हुए ये शिव शंभू का अगला पवित्र भजन।

भक्ति का आनंदमय सफर भक्ति सागर रिचु प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं और आपके साथ हूं मैं सताक्षी। एक और प्यारे से गीत के साथ चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। सुनते रहिए रिचु प्रस्वानी पर मुझे और आनंद देते रहिए इन भजनों का।

श्रोताओं, आध्यात्म हमें हालात के हिसाब से नहीं बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव के हिसाब से जीना सिखाता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है और डूबने वाला है। साधु ने दया करके उसे अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उठाया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। डर के मारे साधु का हाथ हिला और बिच्छू वापस पानी में गिर गया। साधु ने फिर से बिच्छू को उठाने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर से डंक मारा। किनारे पर खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, जब वो बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है और दया करना और बचाना मेरा स्वभाव है। जब वो एक छोटा सा जीव अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूं? यही तो जीवन का सार है जिसे हम समझ नहीं पाते। आइए इसी सार को समझते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ भक्ति सागर।

भक्ति सागर का आनंदमय सफर आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर। आपको इन भक्ति के लम्हों के साथ हम आगे लेकर चलते रहेंगे इस अगले गीत के साथ भी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701।

अक्सर लोगों को लगता है कि जब जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, तभी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती बन जाती है। असल में हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया है कि प्रभु के नाम का जाप तो सुख में ज्यादा करना चाहिए, ताकि जीवन में वो सुख स्थिर रह सके। हम सुख में, घमंड में, खुशी में इतने चकनाचूर हो जाते हैं कि उस ईश्वर को हम बुलाना ही भूल जाते हैं, अपने सुख का साथी बनाना ही भूल जाते हैं, और जब दुख के लम्हे आते हैं तब हम ईश्वर करते हैं। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को अपने सुख में अपने पास बुला के इन्वाइट करके अपने घर में बिठा लीजिए, ताकि वो सुख आपके घर से जा ना पाए। ये है जीवन का सार। एक और गीत सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रस्वानी पर।

भक्ति का आनंदमय सफर भक्ति सागर रिज प्रस्वानी पर आप सुन रही हैं और आपके साथ हूं मैं सताक्षी। एक और प्यारे से गीत के साथ चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर मुझे और आनंद देते रहिए इन भजनों का।

कहते हैं भगवान भगत के वश में है, लेकिन भगत और भगवान इन दोनों का मिलन हो तब ना। सिर्फ रोज सुबह उठकर पूजा कर लेना ही भक्ति नहीं है, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना भक्ति है। अपने दुख के साथ साथ अपने सुख में भी सबसे पहले उसे याद रखना भक्ति है, सबसे पहले उसका नाम पुकारना भक्ति है, अपने भोजन से पहले उसे भोजन कराना भक्ति है, खुद सोने से पहले उसे सुलाना भक्ति है, अपने हर काम को उसे समर्पित कर देना भक्ति है, अच्छा बुरा वो जो भी करे वो सब उस पर छोड़ देना भक्ति है। वो आपको स्वर्ग दे यही चिंतन मत कीजिए, अगर वो आपको नर्क भी दे तो ये उसकी इच्छा, ये भक्ति है। और इसी भक्ति को समर्पित करते हैं ये अगला भक्ति गीत।

भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर, जिसमें हम सब ने आज गोते लगाए, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना की और उसे अपने मन मंदिर में बसाया, प्रभु की एक और भक्ति के साथ, कुछ नए भक्ति गीतों के साथ और हमारी प्रार्थनाओं के साथ। अगले रविवार भक्ति सागर में आपसे एक बार पुनः होगी मुलाकात। आज के सफर से अब लेती हूँ आपसे विदा इस प्रार्थना के साथ कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप भक्ति रस में डूबे रहें। जय सियाराम।

0: रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ देता हूँ हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल्स।

संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य। आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: और दोस्तों आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह आपने सब धार्मिक प्रोग्राम सुने हैं, इस्लामिक प्रोग्राम सुना, वेदवाणी सुना आपने। और चलो यहाँ से कार्यक्रम अब मैं लेकर, एक घंटे का प्रोग्राम है, एक घंटा है दोस्तों, और फिर उसके बाद में आप हो जाएंगे संगीत की झनकार टीम के साथ, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। और इस तरह सा कार्यक्रम चलता रहेगा। रॉय सिंह है, फिर सुशीला है सु, और फिर शशि जोकन भी है और सताक्षी भी, तो पूरा 24/7 आप सुनते हैं कार्यक्रम को दोस्तों। तो चले सबसे पहले देखते हैं हमारा ब्रिस्बेन का वेदर क्या हो रहा है ब्रिस्बेन में। और आज यहाँ का मौसम जो है मिनिमम 18 and 34, बारिश नहीं होगी दोस्तों। कल के लिए कहा गया है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा, 16 and 26 रहेगा, नो रेन दो। ट्यूजडे को पॉसिबल

अवश्य कहा गया है 59 एंड 24, शायद 2 मिलीमीटर तक बारिश हो। वेंसडे को पार्टली क्लाउडी, 13 एंड 25 रहेगा, 1 मिलीमीटर शायद हो बारिश। और थर्सडे को शावर और टू, 15 एंड 23, 2 मिलीमीटर तक होगा बहुत अगर। फ्राइडे को शावर और टू, 13 एंड 24, और सैटरडे को शावर और टू, 14 एंड 24, यानी कि ना ही के बराबर है दोस्तों, ठीक है। और चलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बहुत दूर दूर से सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसा गीत जो दोस्तों जो एक फिल्म खुदरत का गाना 1981 का एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल गाना है दोस्तों। और आपको शायद याद होगा फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने मेन जो रोल है उसे अदा किए थे। और इस गाने का म्यूज़िक है आर डी बर्मन। जब म्यूज़िक देता है दोस्तों तो आप जानते हैं गाना अच्छा ही होगा। और लिरिक्स को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। इसके खास बात यह है कि इसके दो वर्जन्स है दोस्तों, एक किशोर कुमार ने गाया है और दूसरा जो है क्या बता सकते हो? जी हाँ, क्लासिकल सिंगर प्रवीण सुल्ताना को अपने वेजन के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, अपने वेजन के लिए इसको फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए कौन सा गीत है दोस्तों, आप शायद गेस कर लिए होंगे, और बहुत प्यारा गीत है। गीत का बोल है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, फिल्म खुदरत का।

और दोस्तों देखिए, आज बहुत से लोग फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे तो दोस्तों वैसे एवरीडे हुआ करता है, लेकिन फादर्स डे का मतलब ये नहीं होता है कि आप गिफ्ट वगैरह। फादर्स यूजुअली वांट द किड्स टू बी टुगेदर, आकर थोड़ा बात कर ले या टेलीफोन कर ले। वैसे तो हमें हमेशा एक दो दिन में कॉल तो करना ही चाहिए पेरेंट्स को, और डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, यू नो। सो ये सब बातें हैं दोस्तों, और इसमें गिफ्ट की बात नहीं है। मैं तो डरता रहता हूँ कि कोई गिफ्ट ना दे दे मुझे। एक उम्र हो जाता है कि जब आप ये सब नहीं चाहते हो दोस्तों। जी हाँ, ओके। अगला जो गीत है दोस्तों, ये गाना उस फीलिंग के बारे में है जब किसी खास इंसान से मिलने के बाद जिंदगी ही बदली सी लगने लगती है। कभी आपके साथ ऐसे हुआ दोस्तों? दिल में एक नई खुशी, एक नई फीलिंग आ जाती है, प्यार शुरू हो रहा है, लेकिन उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। कैसे हुआ कभी आपके साथ? हाँ, तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये फिल्म परिंदा का गाना है 1989, और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित याद है आपको, और जैकी श्रॉफ और माय फेवरेट नाना पाटेकर भी थे इसमें। म्यूजिक को एक बार फिर आर डी बर्मन ने दिया है, और इसको लिखा है खुर्शीद हलावरी। जी हाँ, हलावरी। तो मैं तो पहले ही नाम सुना हूँ दोस्तों, लेकिन चलो शायद आपको अच्छा लग जाए। आशा भोसले, और कौन है साथ में? सुरेश वाडिया।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: सासों की माला पे सिमरू में।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: वाह, ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत अच्छा लगा सुनकर। दोनों आप जरूर जाकर दोनों सपोर्ट करें। दोस्तों देखिए, जब पेरेंट्स घर पे रेडियो ऑन करके सुनते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप शायद रियलाइज नहीं करेंगे, जब आप घर पर बात करते हो या जो कुछ भी हो, उनका एक कान इधर ज़रूर रहता है कि नहीं। ऐसे हम भी, कैसे गाना जब घर पर रेडियो ऑन हुआ करता था तो फिर उसी तरह हमने भी गाना सीखा, यानी म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हुआ इसी तरह से। कुछ पेरेंट्स हैं जो हमेशा घर पर हिंदी गाना वगैरह बजाते रहते हैं, और उनमें से एक है जो बहुत प्यारी से बच्ची है। सुन बेटा, कैसे हैं आप? चलो, आप म्यूज़िक बहुत पसंद कर, छोटी दिया कैसे है? उम्मीद है आप दोनों बहुत ठीक होंगे। और ये जो खास गाना है, आपने रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट है सोनम। चलो, होपफुली यू विल लाइक, आई मीन आई नो ऑफ कोर्स यू विल लाइक इट बिकॉज यू रिक्वेस्टेड इट, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू लाइक इट टू। तो चलो सुनते हैं।

0: Hey, thank you, Kiskali. I hope you're not too sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born insomniac. Sleeping pills बनाओ. सोना impossible. But really, Akshay, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं.

0: Thank you, Sonam, for that lovely, lovely request. I'm sorry it was a film version, but still, I like that song too. Looks like all the songs that you like, I like too. Wow, looks like we've got common interest. खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हमारे साथ लाइन पर है रावजी. रावजी नमस्कार आपका.
1: नमस्कार नमस्कार.
0: कैसे आप
1: हैं रावजी? भाई आप कैसे हैं?
0: हैप्पी फादर्स डे.
1: थैंक यू थैंक यू. आज मैंने सोचा कि चलो पिता का दिवस है
0: जी
1: और बच्चों से कुछ वार्तालाप कर ले.
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी. हाँ अच्छा लगा.
1: अच्छा जितने भी नाम दुनिया में प्रचलित है
0: जी
1: इन सब का उच्चारण करने पर शुरू और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है. इन नामों में से कोई भी नाम महामंत्र नहीं है. महामंत्र तो उसे कहते हैं जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है. नाम के प्रभाव को तो भगवान शिव ही अच्छी तरह जानते हैं. नाम के प्रभाव से जहर भी अमृत बन जाता है जतीश भाई. और नाम के प्रभाव से शिव जी का अमंगल भेष भी मंगलदायक हो गया. अमंगल भेष की भी अब आरती में महिमा ही गाई जाती है. शिव का चरित्र इतना महान है. चारों युग चारों श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु भाव. आदि सच युग आदि सच है भी सच. नानक जी कहते हैं होसी भी सच. चारों युगों में चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव प्रकट है. क्या सतयुग के भक्तों ने राम राम ही स्मरण किया होगा जबकि नारद जाने वो नाम प्रताप जग जी हरि हरि प्रिय आप. नाम तो निराकार और साकार भगवान से भी बड़ा है. जैसे अग्नि सर्व व्यापक होने पर किसी भी काम की ना हो तो निराकार अग्नि से शीत निवारण होता है और ना ही निराकार अग्नि से भोजन ही बना सकते हैं. मगर जब यत्न पूर्वक लकड़ियों की सहायता से अग्नि प्रकट कर ली जाती है तो उससे हमारे सब कार्य चलते हैं. ऐसे ही निराकार भगवान की प्राप्ति नाम से होती है. जिस नाम की महिमा स्वयं भगवान राम भी ना गा सके क्या वह कोई साधारण नाम हो सकता है जतेश भाई?
0: नहीं.
1: ये थी एक छोटी सी.
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राव जी. और आप वैसे ठीक है? आंटी सब ठीक है?
1: हाँ सब कोई ठीक है और आपके प्रोग्राम भी ठीक चल रहा है.
0: थैंक यू थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद राव जी. हैप्पी वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे.
1: थैंक यू.
0: ओके तो दोस्तों अभी जी हाँ बाय. अभी हम राव जी से बातें कर रहे थे दोस्तों और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान. और अभी अभी पता चला कि फिरोज भाई आज प्रोग्राम को नहीं दे पाएंगे. वो आउट ऑफ टाउन गया है और वहां पर कुछ उसका इश्यूज हो रहा है कनेक्ट करने में. खैर चलो कुछ गीत आप सुनेंगे. अच्छे अच्छे गीत हम लेकर आएंगे तो आप जरूर सुनिएगा दोस्तों. और फिर उसके बाद में आप हो जाएंगे जी हाँ रोहित सिंह के साथ. ठीक है आई थिंक ही विल कम फादर्स डे आई डोंट नो. खैर चलो अगला जो गीत है किशोर कुमार और लता मंगेश आर डी बर्मन के संगीत पर आप सुनेंगे इस गीत को वादा करो.

और उम्मीद है दोस्तों जो गीत मैं बजा रहा हूँ आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों अगला जो गीत है अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज हुआ है, आर डी बर्मन का है म्यूजिक और लिरिक्स, एक बार फिर मजरू सुल्तानपुरी और थोड़ा रोमांटिक और ऐसा कुछ मूड है दोस्तों इस गीत में, और किशोर कुमार का गाया हुआ। तो चलो सुनते हैं इस गीत को, जहाँ तेरी ये नज़र है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651।
0: अगला जो गीत है दोस्तों, ये जी हाँ, तेरे मेरे मिलन की ये रैना, यानी आप जानते हैं दोस्तों, रैना ना रात जिंदगी में कुछ नया लेकर आएगी क्या। यहाँ रैना जो है का मतलब होता है रात, और गुल का मतलब है फूल, जैसे आप सब जानते हैं। और गाने में फूल खिलने की बात सिर्फ रोमांस नहीं है, इसमें एक नई यानी एक नई जीवन, एक बच्चे के आने की भी खूबसूरत इशारा है। वाह क्या बात है दोस्तों। तो चलो सुनते हैं इस गीत को, और तेरे मेरे मिलन की ये रैना, फिल्म अभिमान का गाना है।

और दोस्तों कुछ 13 मिनट रह गए हैं इस प्रोग्राम में और आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला जो गीत है दोस्तों, बात कर रहे हैं जिंदगी में जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो दोस्तों, ठीक है, यही है। और गुजरी हुई जो बातें, ठीक है, बातों को ज़्यादा अफसोस मत, जी हाँ, अफसोस मत करो, क्योंकि वो चला गया। और कल की फिक्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कल की भी फिक्र बहुत करते हैं, लेकिन कल की फिक्र में जो क्या बोलते हैं आज का दिन है आप बर्बाद मत करो, ठीक है दोस्तों। तो ये बातों को आप याद रखें और लाइफ इज बट अ विंग ऑफ एन आई, शायद ऐसे कुछ है। और दोस्तों देखो, ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है कि नहीं, कभी हम खुश होते हैं तो कभी खुशी तो कभी गम, आपको याद है, हैं? लेकिन सफ़र रुकना नहीं चाहिए, जी हाँ। इसकी खूबसूरत सोच के साथ चलो, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा गाना जो मुझे बेहद पसंद है दोस्तों, शायद आपको भी अच्छा लग जाए, सुन

जी हाँ दोस्तों, बहुत सा प्यारा गीत अभी आपने सुना। और अगला जो गीत है दोस्तों, ये एक रोमांटिक गाना है। गाना तो सब मेरे ख्याल से रोमांटिक ही होते हैं, लेकिन ये जो गाना है एक पोइटिक एक्सप्रेशन है। और जैसे जैसे बादल भी मोहब्बत में दीवाना हो गया हो, बताइए कौन सा गीत है। चलो सुनते हैं, दीवाना हुआ बादल।

और दोस्तों चले आखिरी गीत आप सभी के लिए, आप सभी ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। प्लीज कीप लिसनिंग टू रेडियो बिजवानी। और चलो और भी आगे प्रोग्राम में कुछ अच्छा प्लेलिस्ट में आपके लिए प्ले करूंगा कुछ प्यारे प्यारे गीत, क्योंकि इस संगीत के जानकार आज आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आखिरी जो गीत है, और गीत में यही बात है दोस्तों कि जब शायद आपने भी पहला जब प्यार किए होंगे आप, तो आपने खुद अपने आप से सवाल किए होंगे, है कि नहीं, कि जो मैं एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ, जो महसूस मैं कर रहा हूँ, महसूस में जो अभी हो रहा है मेरे साथ, तो आप पूछते होंगे कि क्या किया यही प्यार है। चलिए किशोर कुमार और लता जी से इस गीत को आप सुनेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं निकल रहा हूँ, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ हैप्पी फादर्स डे, हैव अ लवली लवली डे। हम जी हाँ, कल सुबह अमिता के साथ हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय, और हंसिए और हंसाइए दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।